चंद्रा बन में रंग किया कल मह वेद अत्रपण हुआ नाव खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रिक पटानी अमल किया चारे वेद हुए सत्यार पढ़े गुणे तिन चार विचार

चहाण गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत बलिहारी गुर अपने द्यो हरी सदवार जिन मानस ते देव ते किए करत ना लागी वार जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार तेरे कवन कवन गुण कह के गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण न साकों तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम तर सोई ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब मैं तुझ बिन अवर न कोई मैं ताण दिबाण तू है मेरे स्वामी मैं तुद आगे अरदास मैं होर थाओ नाई जिस पह करूं बिनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास सो कहो टल गुरु सेविए अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ वड हंस महला तीजा गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान गुरमुख साचे लगे ध्यान गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान गुरमुख साचे लगे ध्यान गुरमुख

गुरमुख जात पत सच सोए, गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए। गुरमुख शब्द सच करनी सार, गुरमुख नानक परवारै सधार। गुरमुख शब्द सच करनी सार, गुरमुख नानक परवारै साधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

बेसु बेसुमार यथा अगणित अतुलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। गुरु गरीब नवाज, चावर छतर तखत दे मालक, गुरुआं के गुरु, पीरां दे पीर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़ मिल बैठे गुरु प्यार वाले, सतगुरु जी ने बड़ी अपार बख्शिश कृपा वरताई है, जो अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालिओ, जो तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण कर दियां हो, वो चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां आरंभण तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, अपना रहमत भरिया हाथ सिर ते रखन। सतगुरु आप रसना नूं बल बख्शन और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रखे, दोवें हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदे हां। लवाओ गुरु चरणां विच हाजरी अदब सहत, सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

रोकरे तेरा कार्य सब सवारण। सवना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो अरनाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, हर ता तेरे सब कुछ है, जिस दे सो पावे सदा सिफ सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया, वज शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो आच नाम दार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया परेशान सुख मनाए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दियां ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभाग्य, कर सुभाग्य शब्द वाजे कला इत कर तारिया। पंच दूत दवास कीते काल कंट कुमारिया, तुर करम पाया तुद जिन को सेना, मर के लागे कह नानक तैस को तित कर अनद वाजे। अनद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया तरे सगल विसूरे। दोगरो संताप तरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सर से पूरे गुरते जाने। उनते पुनीत कहते पवित सदगुर या पर पूरे, बिनवत नान गुर चरण लागे वाजे न दूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत मात, दिवस रात विदाई दाया। खेल सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया, वाचे त्रम दूर हरमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मुसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया गए मुसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

धारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। हर कीरत काल युग पद उत्तमा हर पाइये बो गुर सांझा।

हर कीरत काल युग पद उत्तम हर पाइए सतगुर मांझा हौ बलिहारी सतगुर आपने जिन गुप्त नाम परगांजा दर्शन साध मिलियो वड पागी सब किल बिख गए गवांजा सात गुर शाह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिन को कृपा करी जग जीवना।

जन नानक लेखा समझा, जिन कौ कृपा करी जग जीवन, हर उर तारियो मन मांझा। धर्म राय दर कागद फारी, जन नानक लेखा समझा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपहो निरवैर अकाल मूरत, अजूनी सहभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपहो निरवैर अकाल मूरत, अजूनी सहभंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपहो निरवैर अकाल मूरत, अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपहो निरवैर अकाल मूरत,

राखा आप वाहिगुरु ए अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे

कीर्तन छे पौड़ियाँ अनंत साहिब जी दे पाठ जी की अरदास है जी। बाणी पढ़दियाँ सेवा संभाल करदियाँ अनेक प्रकार दियाँ भुलां गलतियाँ हो जांदियाँ ने। अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी अगां तो समत बख्शनी दारे आई हुई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावां दर मंजूर करनियाँ यात्रावां सफल करनियाँ जी। सतगुरु जी आप जी दे हजूर पवित्र कड़ा प्रशादी देग सज के हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रशाद संगत विच वरते

मानिया। चक्र चेन अर वर्ण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पेख कौ कह न सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतोज कही जय। कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणी त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। तव सर्व नाम कथा कवना कर्म नाम वर्णत सुमत। शत्रधारी शत्रिपत शैल रूप शेतनाथ शौणी करि शायावर शत्रिपत गाइए। विश्वनाथ विश्वंबर वेदनाथ बाला कर बाजी गरबान तारी बंधन बताइए। न्योली कर्म दूता तारी विद्या तार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नक ध्यान होना पाइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन त्याई है। राजा न राज पाना न पान दीवान देव उपमा महान। सो कहो टाल गुरु सेवियन सहज सुभाए दर्शन परस्य गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अर्जुनी सैभं गुर प्रसाद वाहि गुरु सतनाम वाहि गुरु सतनाम

सतो नाम वाहि गुरु सतो नाम वाहि गुरु सतो नाम वाहि गुरु सतो नाम वाहि गुरु सत नाम वाहि गुरु सत नाम वाहि गुरु सत

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਬਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵੜ ਦੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੇਂ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਾਈਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ
उड़े उड़ आवे सैकों सा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन क्रिया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंतरा परा भरिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंतरा परा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहीं सब त्यावहीं तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दया भो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू गड़ गड़ अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्या वही तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर त्याया जी तिन टूटी जम की भांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेयंत बेयंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तब ताप ही जब ही भयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी कर किरया खटक्रम करंता से भगत भरे जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड्यावर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दहें सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करें
तेना नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आप वे छोड़िया आ मिलाया, तू दरिया सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही, जी जन सब तेरा खे, विजोग मिल बिछोड़िया संयोगी मे, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने ही सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सर वरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबी अले, मान एक न चेत समूढ़ मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जैरा तू नाही वी सरिया, आसा महला पंजवा, पई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एहे तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते न काम, मेला साध संगत भाज केवल नाम, स्रंग जाम लाख पवजिल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संयम धर्म नाक माया, सेवा साध ना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सवै तुम काब हो, आभाद दे मुहे बचाव हो, सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सबे रिनको आज संगरिए, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुहें छाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा हमारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये, आभादे मुझे उबरिये, मरण काल का त्रास निवरिये, हो जो सदा हमारे पछा, श्रीअस्त जो करी हो रक्षा, राख लियो मोहे रखण हारे, साहिब संसहाए प्यारे, दीन बांध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो,
वेदराज ब्रह्मा जो थियो जौन काल सलोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जौन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर यस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तव देहे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जीते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सब हीते रहत नरालम जानत बेद भेद अर आलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मोड़े उचारत पिता जाको पेव न पावत बिदा ताको कृपाहण अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चीनत न भव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जय पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा इक रूप अनूपस रूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उतपुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवै बैठा कहो सिमट पयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आजुगाय स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रणगाता जे आस्तु जे तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहाए मरे पुरख जान पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताही सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दृष्ट तन जहे न हरियो ताकि ताप तनक मैं हरे हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब हुई दुष्ट शह शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल भांसती ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर ठो मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सर उठो मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया
मैं गहे जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम प्राण को राम अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहें हम एक ना जाने ओ सिरियस पाण कृपा तुमरी कर मैं ना कहे हो सब तो ही बखने दोहरा सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गए की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गए की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता वाया सह सेती मनवजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्द तंगाव हरी गेरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब में सारना अंगीकार ओहो करे तेरा कार्य सब सवारना सवना गल्ला सुमृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या ना ही घर तेरा करदा तेरा सब किछ है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या ना ही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया ये वडियाइया कह नानक सुनो संतो शबद रूपे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंचव तित कर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे कह नानक तस कुआ तित खर अनहद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रभ पाए उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गोरते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनी कहते पवित्र
सतगुरहा पर भरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे आनहाद तूरे। मुंदामणि महला पंजवां। थल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अदारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका हुए उदारो। एह वस्त तजी रह जाई नित नित रखो और तारो तम संसार चरण लग त्रिये सब नानक ब्रह्म पसारो। स्लो महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाहीं

दोहराम आग्या भैया काल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने जो प्रभु को मिल बोच है, राज कहेगा खालसा, खुआर हुए सब मिलेंगे, खुआर हुए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नावे ओए खप खप मोए करंजा जेनो हर हृदय नाम ना बसया। तिन मात की जय हर बंजा तिन सुंजी दे रह बिन नावे ओए खप खप मोए करंजा।

और अपने जना गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलया वडभागी सब किल बिख गए गवाजा।

फारी जन नानक लिखा समझा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणां च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुर इतिहासक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जी होके समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणां च जुड़न दा यतन करिए। सभना दियां हाजरियां गुरु पातशाह जी दे पावन चरणां विच लग जाण। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता अमृत के दाते सरबंस दानी बादशाह दरवेश धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास नूं इस अस्थान तो लड़ीवार सरवण करदे आ रहे हों। आनंदपुर साहिब पवित्र स्थान ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी आईयां हुईयां सिख संगतां नूं गुरमत दा उपदेश दिंदे हन। जिथे रोजाना रब्बी बाणी अमृत बाणी दे प्रवाह चलते ने उत्थे रोजाना ही अमृत दा बाटा तैयार हो।

है और अमृत अवलाखी आके गुरु महाराज के चरणों का आसरा लेंदिया होया अमृत की दात प्राप्त करते हैं। सतगुरु महाराज जी पर उपकार करते भी ने और पर उपकार करना सिखाते भी हैं। जिथे महाराज दल भंजन गुरु सूरमा बड जोधा बहो पर उपकारी, जिथे वो बहुत वड्डे सूरमे ने उथे पर उपकारी भी सतगुरु महाराज हैं। बेअंत संगतां गुरु महाराज के दरबार विच आ रही ने अगले इतिहास नूं सरवण करन लई

0: करा तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वरना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना। कवि जी कहिंदे कलगीधर पातशाह जी दी केड़ी केड़ी वडियाई मैं दसना करा
1: आगे जग में पयो ना को
0: जिन्ने पर उपकार गुरु कलगीधर पातशाह ने कीते आ जां अगे करने आ ऐसा जगत विच होर कोई नहीं दिसदा
1: एवें उपकार करै जग जो
0: कोई है जिन्ना वड्डा उपकार गुरु कलगीधर पातशाह ने कीता। गुरु साहब जी पुत्र बन के पिता जी नूं अपने हथीं तोरदे आ है एडा वड्डा पर उपकार। फिर एक दिन पिता बन के पुत्रां नूं अपने हथीं तोरदे आ इन्ना वड्डा पर उपकार है कि पुत्र बन के पिता तोरदे आ ते पिता बन के पुत्रां नूं तोरदे आ महाराज जी। और फिर माण किनू दे रहे आ इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। सतगुरु महाराज ने आनंदपुर साहब छड़ता परवाह नहीं की। जेड़े शाही शहनशाह ने सानू शहनशाही वाला जीवन देने लई आप माछीवाड़े दे जंगल दे विच पए हुए आ पैरों में जोड़ा नहीं है बस्तर लीरो लीर होया वो शहनशाह का शहनशाह अज माछीवाड़े के जंगल में है क्यों है की लोड़ पई सी ताकि असी शहनशाह वाला जीवन जी सकी। सानू महाराज ने यह जीवन देने वास्ते ये वडियाइया देने लई एडे वड्डे पर उपकार किते। कवि जी कहिंदे मैं किहड़े किहड़े पर उपकार उन्हां दे बयान करा और कौन है जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बराबरी कर सके।
1: जथा योग जे करे विचारन
0: तो जिहड़ा भी कहिंदे ने जथा योग जिन्नी कु जिहदी समर्था उस अनुसार जे ओ विचार करेगा भी
1: इनहु सारखे पै उपकारन
0: ओहदे भी हाथ जुड़ जाणगे ते ओह भी आखेगा तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। हे पातशाह मैं किहड़े किहड़े गुण गावा की कवां तू कवि है संत है सिपाही है नीले ते सवार है मर्द अगंबड़ा है किहड़े किहड़े कलगीधर पातशाह कलगियां वाले हो आप पुत्रां दे दानी हो किहड़े किहड़े गुण अमृत के दाते हो गुरु नानक साहब दी रब्बी जोत दे मालक हो दो जहाना दे मालक हो। कहिंदे जिहड़ा यतन करेगा वह भी अखीर ये आखेगा कि केड़े गुरु पातशाह तुहाडे गुण गावां गुण

चा भगवंत सगल समग्री तुमरै तुमते होए सो तुमरी गत मित नानक दास। बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती सुमर कैम।

जिस डठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै करनो निदा बिताए। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता। तिन्हा प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाई खोपरियां लहाइयां, चरखड़ियां ते जड़े तनारियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां,

जी वेखे रात्रि वेले ते दीवान सजाए गए सजे हुए दीवानांदर गुरे इतिहासिक लड़ीवार कथा विचारा शब्द कीर्तन से पौड़ियां आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करनी आप जी आंदे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी।

दोहरंग आज्ञा पैया काल की सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा ख्वार हुए सब मिलेंगे, ख्वार हुए सब मिलेंगे। बोले सोनेहा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ओम सोको पल गुरु सेविया अहनस सहजो सुपाहे दर्शन प्रसो गुरु का जन्म मरण दुख जाए सपना श्री वाहे गुरु साहिब जी जय।

ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महल्ला पंजवा करो बनंती सुन हो मेरे मीता संत टहल की वेला यहाँ का चलो हल्ला आगे वसन सोहेला आओग कट दिन सरनारे मन गुरु मिल काज सवारे रहो यह संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पिया वे हो रस कथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बेहजे हो हर गुरु ते मन हिम सेरा निज कर महल पावे सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास सुख मंगे मुको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते

जोगन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बड़ो अभिमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी महे हितानी बल बंच छप करत उपावा पेखत सुनत प्रभ

चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तो मूरत करी चथा पल सिमरन राम नाम रसना संगलो होचो काज अलप सुख बंदन कोट।

चोल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यों मोह बड़ो सोकना मूरत बोयो बीज अहंग मम अंकर बोयो बीज अहंग मम अंकुर बीतत औद करत अगना मृत मजार पसार मुख निरकत पुंचत पुगत पूख पुगना सिमर गोपाल दयाल सत संगत

छतर न पतर न चोर न चावर, बहती जात हृदय न विचारो, रथ न असव न गज सिंहासन।

दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, कर्त विकार दो कर चारो, मित्र न पुत्र कलतर साजन सख, उल्टत जात बिरख की छारो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, खिन खिन सिमरो अगम अपारो, श्री

माया रंग बिरंग करत ब्रह्म मोकै कूप गुबार परयो है। एता गब आकाश नामावत बेष्टा अस्त किरम उदर भरयो है। दह दिस धाए महा बिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है। अनिक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है। प्रेम भगत उदरहे से नानक कर कृपा संत आप करयो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुखहर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी। इश्नान दान तापन सुच किरिया चरण कमल।

0: गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए, हर गुरु नानक जिन पर से ओ ते बोड़ फिर जोन ना आए। कवन जोग कौन ज्ञान त्यान, कवन विद उस्तत करिए, सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिए। बरमादक सनकाद शेख गुण अंत न पाए, अगो गो नहीं जाए पूर सर्व रो समाए। जय काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, हार गुरु नानक जिन पर सो ते इत उत सदा मुक्ते।
1: जबलोन

0: गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
1: काल समुद्र पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसे शांत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जान्यो पयोता संसर सोई तरन गवन नव खंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर पनमत राख छिपेद नहीं गुरु अर्जुन परतख हर।
2: जग और नया है महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चूक कह रे मन बेद पिपे।

देहे न गेहे न नेहे न निता, माया मत कहा लो गारो। छतर न पत्र न चौर न चावर, बहती जात हृदय न बिचारो। रथ न अश्व न

करो, कूट न ओट न कोस न छोटा, करत बिकार दो कर चारो, मित्र न पुत्र कलतर साजन सख, उल्टत जात बिरक की छारो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन

साहिब तू जिन सच सच बताया जिस तू दे तिस मिले सच दतनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन कह दे सच वसाया मूर्ख सत न जाननी मनमुखी जिन मंगवाया

गवाई बिणनावै कुछ थाए न पाई। रहे बिबाणी मड़ी मसाणी अंद न जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे